श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गो माता की, भारत माता की, प्रातः श्री कान्हा जी की, जय जय श्री सीताराम।

भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम श्री सीताराम नाम महाराज की।

भजहु राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर।

हम इस विशेष प्रसारण में हमारे संवाददाताओं से भी जुड़ते हैं, उनसे यात्रा से जुड़े सभी अपडेट्स लेते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। चाहे भगवती नगर बेस कैंप जम्मू के हमारे संवाददाता हो या नुनवन बेस कैंप, बालतल बेस कैंप, हर जगह हमारे संवाददाता तैनात हैं और उस बेस कैंप या ट्रांजिट कैंप से जुड़े सभी अपडेट्स वो आप तक पहुंचाते हैं। कुछ ही देर में हम हमारे संवाददाताओं से जुड़ने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। एक क्रम में हम हमारे संवाददाताओं से जुड़ते हैं। पहले चलते हैं हम भगवती नगर बेस कैंप जम्मू, उसके बाद हमारे एक और संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग का हाल हम तक पहुंचाते हैं, फिर हम नुनवन और बालतल बेस कैंप्स में हमारे संवाददाता जो हैं उनसे जुड़ते हैं फ़ोन लाइन्स के ज़रिए और उनसे भी हम अपडेट्स लेते हैं। श्रोताओं, आप सुनते रहिए ये विशेष प्रसारण।

0: श्रोताओ, आज तीर्थ यात्रा का 29वां दिन है। यात्रियों के 24वें जत्थे को भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से आज रवाना कर दिया गया। 1605 तीर्थयात्री जो आज जम्मू से रवाना हुए हैं। अभी यात्रियों का कारवां राष्ट्रीय राजमार्ग पर रवाना दवा है। आइए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन से, जो बानीहाल से हमारे साथ जुड़ते हैं। और अभी हमारे तीर्थयात्रियों का काफिला कहाँ तक पहुँचा है, ये हम मोहम्मद तस्कीन से जानेंगे। जी तस्कीन
1: जी, शुक्रिया। आज जैसा कि आपको मालूम है कि आज हाईवे को बंद रखा गया है, उधमपुर में काम करना है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, और रामबन डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ मुकामात पर काम करना है जो पिछले बारिशों की वजह से जो डैमेज हुआ है, हाईवे नुकसान पहुंचा है, वहां पर जो ट्रैफिक को बहाल करना मुश्किल हो रहा है अथॉरिटीज को, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज जो है ट्रैफिक को बंद रखने का फैसला किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने। कल इसमें उधमपुर डीसी की तरफ से एक ऑर्डर निकाला।

एडमिनिस्ट्रेशन रामपदे, उन्होंने भी ये एक देसी तरह के एक ऑर्डर पास किया जिसमें कहा गया कि गांगरू और किश्तवाड़ी पत्थर शेर बीवी के दरमियान हाईवे को जो खराबी पहुंची है तो उसको काम किया जाए, लेकिन इसके बावजूद हाईवे पर ट्रैफिक बंद रखें। आज किसी किस्म के भी ट्रैफिक को न कश्मीर की तरफ, न जम्मू की तरफ और न डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह की तरफ चलने की इजाजत है। अलबत्ता रियासी और उधमपुर और कटरा जाने वाले सिर्फ जो यात्री जम्मू से या जो भी पैसेंजर्स होंगे उन्हें सिर्फ चलने की इजाजत होगी, बाकी किसी किस्म के ट्रैफिक को चलने की इजाजत नहीं है आज जम्मू श्रीनगर हाईवे पर। इस दौरान जो श्री अमरनाथ यात्रा का काफिला है वो जम्मू से रवाना हो चुका है, आज सुबह ही बालतल के रास्ते जाना है इन्होंने, तो पूरे 3 बजे के आसपास इन्हें निकाला गया है जम्मू से। तो 54 गाड़ियां हैं, 54 व्हीकल्स हैं, बसें हैं, कारें हैं, जीपें हैं इसमें, तो इसमें कुल मिलाकर 1605 जो श्री अमरनाथ यात्री हैं वो आज ये पवित्र गुफा के सफर की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल जो मौसम पूरा अब्र आलूद है पूरे इलाके में रामबन डिस्ट्रिक्ट में, तो जो ट्रैफिक है अभी रामबन डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुका है, बालतल वाली कानवाई और बानहाल की तरफ बढ़ रही है, जहां पर इन्हें ये जो वहां पर जो लांबर का ग्राउंड है जहां पर लंगर्स लगाए हुए करीब 22 लंगर हैं, तो वहां पर इनको

जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी सिविल गाड़ी को आज राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि जितने भी हमारे तीर्थ यात्री हैं उनका कारवां जो है, जिन्हें जम्मू से आज रवाना कर दिया गया सुबह 2:45 बजे के आसपास, और जिनकी संख्या 1,605 है, 54 गाड़ियों में ये हमारे तीर्थयात्री सवार हैं। अभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर इनका कारवां चल रहा है, इन्हें आगे जाने की अनुमति दी गई है और

0: थे फोन लाइंस के जरिए। अब हम चलते हैं नुनवान बेस कैंप से, जो हमारे संवाददाता है एस तारिक, उनसे जुड़ते हैं और वहां के क्या कुछ अपडेट्स हैं उनसे लेते हैं। तो तारिक, क्या आज भी पहलगाम के पारंपरिक मार्ग से यात्रा नहीं हो रही?
1: जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा है। आज भी स्थायी रूप से निलंबित रही है यात्रा पहलगाम के लिए, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने विशेष प्रसारण के माध्यम से अपने श्रोताओं को पहले शुभ प्रभात कहूं
0: जी
1: और आपका भी शुक्रिया। आज श्री अमरनाथ जी यात्रा के प्राचीन अमरेश्वरी मार्ग पहलगाम से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पवित्र गुफा तक

0: मजीद 5211 शिव भक्तों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा पवित्र गुफा में दर्शन प्राप्त किया। इसके साथ ही यात्रा के आरंभ से अब तक दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की जो कुल संख्या बढ़कर 4,46,788 हो गई है, जो कि एक अच्छी तादाद है। इधर पहलगाम के नुनवर आधार शिवर शिशनाग और पंचतरणी शिवरों में इस समय कोई श्रद्धालु मौजूद नहीं है। ताहम यात्रा मार्ग और सभी आधार शिवरों पर विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी श्रद्धालुओं की सेवा सुरक्षा और आवश्यक सहूलियात की फराहमी के लिए बराबर तैनात है। जी
1: जी तारिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत शुक्रिया
1: जी। श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता एस तारिक, नुनवन बेस कैंप से हमारे साथ जुड़ रहे थे। पहलगाम का पारंपरिक मार्ग फिलहाल आरजी रूप से इन्होंने बंद रखा गया है, क्योंकि वहां के ट्रैक्स पर मरम्मत का काम चल रहा है, और जैसे ही ट्रैक्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे उस मार्ग से भी हमारे तीर्थयात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। ये बता रहे थे कि कल

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा आप हमें डीटीएच पर सुन रहे हैं। हम उपलब्ध हैं वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के अलावा यूट्यूब के आराधना चैनल और न्यूज़ ऑन एआर की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, यात्रियों के 24वें जत्थे को भगवती नगर बेस कैंप से आगे बढ़ने की अनुमति दी गई है। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग आज सिविल ट्रैफिक के लिए बंद है, पर हमारे तीर्थ यात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई है और 1605 है हमारे तीर्थ यात्री जो आज भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से रवाना हुए हैं। ये बालतल की मार्ग से आज पवित्र गुफा के दर्शन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं पारंपरिक पहलगाम मार्ग अभी यात्रा ट्रैक्स में मरम्मत की वजह से बंद रखा गया है फिलहाल, और बालतल के मार्ग से ही हमारे तीर्थयात्रियों को आगे जाने की अनुमति दी गई है और आज भी वो बालतल के मार्ग से ही तीर्थ यात्रा करेंगे। 1605 ऐसे तीर्थयात्री जो आज भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से रवाना हुए हैं। 54 छोटे बड़े वाहनों में ये काफिला भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर रवाना हुआ है। 1215

पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि अभी भी आकाश में घने बादल छाए हुए हैं, तो मौसम बिल्कुल खराब है। लिहाजा यात्रियों की सुरक्षा जो है वो बार बार हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं कि वो महत्वपूर्ण है जिला प्रशासन के लिए, तो लिहाजा प्रशासन बाजाबता तौर इस पे नजर कड़ी नजर रखी हुई है कि यात्रा जो है वो अच्छी तरीके से या सुचारू रूप से संपूर्ण हो सके। तो इसलिए जिला प्रशासन के जितने भी अफसर हैं वो बालतल में मौजूद हैं, तो बाजाबता तौर उन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि फिलहाल मौसम की स्थिति देखकर किसी भी श्रद्धालु को पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं दी गई। अलबत्ता जो कल या परसों यात्री पवित्र गुफा की ओर दर्शन के लिए रवाना हुए थे वो बिल्कुल आज भी उनमें से कुछ धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। तो देर रात गए तक बालतल मुखी मार्ग से 5,064 यात्री सुरक्षित बालतल बेस कैंप पहुंचे, जिनमें 3,671 पुरुष, 1,119 महिलाएं, 126 बालक बालिका, 22 साधु, 10 साधियां, 4 ट्रांसजेंडर एवं 112 सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे। तो उन यात्रियों को फिलहाल रात्रि विश्राम के लिए बालतल बेस कैंप में रखा गया। तो उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर आकाशवाणी को बताया कि इस वर्ष जिला प्रशासन गांधरबल ने बालतल मुख्य मार्ग से हर पड़ाव पर यात्रियों के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं, जिनमें भोजन वगैरह की अगर हम बात करेंगे या चिकित्सा की बात करेंगे तो वो बिल्कुल बेहतरीन सुविधाएं जो है उनके लिए जगह जगह रखी गई है। क्योंकि इसके साथ साथ यहाँ यात्री जो है वो सुबह सवेरे 2 बजे से ही दुमेल कंट्रोल गेट की तरफ बालतल बेस कैंप से निकलते हैं और 3 बजे से अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तो 3 बजे के बाद इन बाबा बर्फानी के भक्तों को पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति दी जाती है RFID कार्ड हासिल करने के बाद। तो इस यात्रियों के लिए सुबह 2 बजे से ही जो यहाँ पे सेवादार हैं वो काम में लगे रहते हैं और सुबह सवेरे उठकर उनके लिए भोजन वगैरह तैयार करते हैं। वो भोजन करके ही यात्री

0: रात भर इन्हीं दो पड़ाव पर इनको कायम करना पड़ता है, जहां प्रशासन ने यात्रियों के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं। तो इस तरह कहते हैं कि हम बीते दिनों की तरह फिलहाल जो अगर मौसम खराब ना रहता तो तीर्थ यात्रा जो है वो धार्मिक रूप से बाल्टर मुख्य मार्ग से जारी है।
1: अजी रिजवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद आपका।
1: जी श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता रहीम रिजवान, गांदरबल से हमारे साथ जुड़ रहे थे और ये बता रहे थे कि कल शाम जो वर्षा वहाँ हुई है उस वजह से आज फिलहाल बालतल बेस कैंप से भी किसी भी तीर्थयात्री को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हालांकि जो तीर्थयात्री ऑलरेडी वहाँ कल शाम निकल चुके थे पवित्र गुफा की ओर, उन्हें आज वो आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे वो वापस बालतल बेस कैंप भी लौट जाएंगे तीर्थयात्रा करके। पर फिलहाल आरजी तौर पर बालतल बेस कैंप से भी किसी तीर्थयात्री को अभी फिलहाल के लिए आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। मछुआरों को कल तक समुद्र में न जाने की सलाह। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरमना ने डिस्कस थ्रो कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। संसद के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। राज्यसभा ने

0: राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। हमारी

में माइकल ओडायर को मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और ब्रिटिश सरकार को कड़ा संदेश दिया। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिया।

डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरामना ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: JD, CPIM and others also participated in the discussion on the bill. Prime Minister Narendra Modi has said government is continuously taking one step after another to build a trustworthy examination system. In a video message on social media, Mr. Modi said, for the past several decades, every state government and the central government have faced the problem of paper leaks, and this has put the future of students at risk. He said, keeping all this in mind, reforms in the education and examination system have become essential across the country, both in the states and at the center. The Prime Minister said Parliament has passed the bill containing stringent legal provisions.
1: दोनों सदनों ने कठोर प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। पार्लियामेंट ने पेपर लीक के लिए सजा, सख्त सजा के साथ पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की

0: लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत इम्तिहान का एक भरोसेमंद निज़ाम तैयार करने के लिए लगातार एक के बाद एक कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि पिछली कई दहाइयों से हर रियासती सरकार और मरकजी हुकूमत ने पेपर लीक के मसले का सामना किया है, जिसने तलबा के मुस्तकबिल को दाव पर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि इस बात को जहन में रखते हुए ही रियासतों और मरकज में तालीम और इम्तिहान के निज़ाम में इसलाहत करना लाजिमी हो गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्लियामेंट ने एक बिल मंजूर किया जिसमें सख्त कानूनी शिकों को शामिल किया गया है।
1: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली

0: अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: जम्मू और कश्मीर में अहदेदारान ने आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा NH 44 पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रखने का हुक्म दिया है ताकि समरोली में लाढ़ा के नज़दीक उधमपुर चेनानी हिस्से पर भाली के काम में सहूलत हो सके। केरलम के साहिल पर आज रात ट्रॉलिंग पर पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: केरल के साहिल पर जुमे और हफ्ते की निसफ शब में मछलियां पकड़ने वाली ट्रॉलिंग पर पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। ट्रॉलिंग पर सालाना पाबंदी इसलिए नाफिज की गई थी ताकि समुद्र में मछलियों की अफजाइश नस्ल में आसानी हो। फिशिंग सेक्टर में हजारों वर्कर्स मछलियां पकड़ने के नए सीजन की तैयारियों में मसरूफ हैं। मछलियां पकड़ने वाले उन माहीगीरों ने थिरुअनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और दीगर इलाकों के नज़दीक बंदरगाहों पर पहले ही पहुंचना शुरू कर दिया है, जो अपने आबाई कस्बे में लौट आए थे। दरियासना इंतहाई ख़राब मौसम और मछलियां पकड़ने से मुतालिक सरगर्मियों पर पाबंदियों के इम्कान ने माहीगीर बिरादरी में तशवीश पैदा कर दी है। केरल में 14 ज़िलों में से 11 ज़िलों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। थिरुअनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: सऊदी अरब और 13 दीगर ममालिक ने एक बहरी दिफाई इत्तेहाद कायम किया है जिसका मकसद मगरबी एशिया में अहम आबी गुजरगाहों में जहाजरानी को तहफ्फुज फराहम करना है। इस इत्तेहाद पर रियाज में मुतअद्दिद मुल्कों की फौजी शख्सियात की मुलाकात के बाद ये ऐलान किया गया है।

में जल्द एक सरकारी बयान जारी किया जाएगा, जबकि इसराइल को इस समझौते पर अभी अपनी राय देनी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयले की एक कान में धमाके के बाद कम से कम 18 कानकुन हलाक हो गए और 24 दीकर उसमें फंस गए। ये धमाका बज़ाहिर मीथेन गैस की वजह से हुआ। एहलकारों के मुताबिक इस धमाके के कुछ घंटे बाद इब्तदाई तौर पर 7 कानकुनों की लाशें बरामद की गईं और इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने वाले अफराद को बाद में मजीद 11 लाशें मिलीं। हुकूमत के कानों से मुतालिक इंस्पेक्टर गनी बलोच ने कहा है कि जब तक फंसे हुए कानकुनों का पता नहीं चल जाता, उस वक्त तक बचाव कार्रवाई जारी रहेगी। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस हफ्ते के शुरू में आम शहरियों की अंधाधुंध गिरफ्तारियों के बाद पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में मुजाहिरे जारी हैं, जिनमें 40 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। मकबूजा इलाके में मकामी हुकाम अब उन खवातीन को निशाना बना रही हैं जो अपने बुनियादी हकूक के लिए मुजाहिरे कर रही हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी तादाद में जमा खवातीन

0: तीन अफसरान की वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की इज्जत अफजाई। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अहमियत के साथ पहले सफे पर जगह दी है। शिमाली भारत में 4 अगस्त तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई, ये खबर सभी अखबारों में नुमाया है। इस दौरान गरज चमक और तेज हवाओं के लिए वार्निंग जारी की गई है। रोजनामा इनकलाब की एक अहम शह सुर्खी है, दिल्ली में कारोबार को आसान बनाने की असलाहत मुहिम तेज, इसके तहत तमाम ज़ेर इल्तवा कामों को अगस्त के वस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने पेपर लीक के लिए सख्त सजा के साथ पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए इस बिल को मंजूर किए जाने का खैर मकदम किया है कि ये इम्तिहानात के निज़ाम को मजीद मुतहर्रिक बनाएगा। सऊदी अरब और 13 दीगर ममालिक ने मगरबी एशिया में अहम आबी गुजरगाहों में जहाजरानी को तहफ़ फराहम करने की खातिर बहरी दिफाई इतिहाद का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और दीगर मुसल्ला ग्रुपों को

पहलगाम के मार्ग पे जो यात्रा ट्रैक है वहाँ पर अभी मरम्मत का काम चल रहा है, जिस वजह से पहलगाम के मार्ग से अभी फ़िलहाल यात्रा नहीं हो रही और वहाँ से यात्रा को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और बालतल का जो मार्ग है, जो छोटा है, 14 किलोमीटर का है रास्ता, और पर ज़रा कठिन मार्ग है। तीर्थयात्री अक्सर कोशिश करते हैं कि वो पहलगाम के पारंपरिक मार्ग से ही जाएं, आस्था से जुड़ा हुआ वो मार्ग है, कई सारी चीज़ें वहाँ हैं, कई सारी बातें उस मार्ग से जुड़ी हुई हैं। और आस्था की जब बात करते हैं तो हमारे तीर्थयात्री उसी पारंपरिक मार्ग से जाना पसंद करते हैं, और आंकड़े भी हमेशा ही हमें बताते हैं कि पहलगाम के मार्ग से हमारे तीर्थयात्री ज़्यादा आगे जाते हैं। पर बालतल का जो मार्ग है, ऊंचे लंबे लंबे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पर्वत, और वहाँ का कठिन मार्ग जब हमारे तीर्थयात्री तय करते हैं तो 14 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करने के बाद वो पवित्र गुफा पर पहुँचते हैं, माथा टेकते हैं और शिव जी की पूजा

आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है, यात्रा ट्रैक्स पर मरम्मत चल रही है। और रहीम रिजवान जो हमारे गांधरबल के संवाददाता हैं, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने भी यही हमें बताया कि आज वहां से भी किसी भी यात्री को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पर जितने भी हमारे तीर्थ यात्री हैं, कल शाम तक उन्होंने वहां से बालतल के मार्ग से ही कल भी उन्होंने यात्रा की थी, क्योंकि कल भी यात्रा ट्रैक जो पहलगाम का मार्ग है वहां पे मरम्मत चल रही थी, इस वजह से उन्होंने बालतल के मार्ग से ही उन्होंने यात्रा

श्रोताओं, आज श्री अमरनाथ जी यात्री 2026 के 24वें जत्थे को भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से प्रातः 2:45 पर रवाना कर दिया गया। आइए चलते हैं सीधे भगवती नगर जम्मू, जहां से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब हमारे साथ फोन लाइंस के जरिए जुड़ते हैं। आइए।

लगातार जम्मू कश्मीर पहुंच भी रहे हैं और यहाँ पंजीकरण की प्रक्रियाओं को पूरा कर बेस कैंप भगवती नगर भी पहुंच रहे हैं। तो लगातार ये सिलसिला जारी है जहाँ श्रद्धालु कश्मीर घाटी से वापस लौटकर दर्शन कर वापस लौट रहे हैं अपने घरों को। वैसे ही लगातार यहाँ से मौसम की परिस्थितियों के बावजूद भी मैनेजमेंट के अनुसार श्रद्धालु जो है बराबर घाटी पहुंच भी रहे और ये लगातार रवाना होकर प्रसन्नता के साथ अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। श्रावण के इस महीने में श्रद्धालु यहाँ जम्मू के मंदिरों में भी पूजा अर्चनाओं में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं इस दौरान श्रावण मास के पहले दिन कल यहाँ शिव स्थलों पर बाबा बर्फानी की गूंज और जयकारे दिन भर सुनाई दी।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं DTH पर, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर, YouTube के आराधना चैनल पर भी हम उपलब्ध हैं और आप हमें सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, प्रतिदिन ये विशेष प्रसारण आप सुन पाते हैं सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। अगर इस प्रसारण से रिलेटेड आपके कुछ प्रश्न हैं, आप कुछ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9596990954। एक ईमेल एड्रेस भी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं जिसके ज़रिए आप हम तक अपनी मैसेजेस पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है akashvanibaltal@gmail.com। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है उर्दू में समाचार सुनने का। आइए समाचार सुनते हैं।

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं इशफाक अमीन। पार्लियामेंट ने पब्लिक एग्जामिनेशन तरमीमी बिल 2026 मंजूर किया है राज्यसभा में कल, जबकि लोकसभा में बुधवार को इस बिल को बहस के बाद मंजूरी दी गई थी। कल जब राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर के बाद शुरू हुई तो मरकजी वजीर मामलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह बिल पेश किया और 7 घंटों की बहस के बाद इसे पास किया गया। वाजह रहे, इस बिल में इम्तहानात में बेजाबतियों के मुर्तकिब अफराद के लिए

0: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा, बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में कल सलामती से मुतलिक काबीना कमेटी की मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें मगरबी एशिया की सूरतहाल के चलते मुख्तलिफ महकमों और वजारतों की तरफ से किए जा रहे इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर अवामी मफादात के इकदाम की तेज़ तर अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए बेहतर निगरानी और तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू के चेयरमैन राहुल सहाय ने कल लोकभवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की।

इनके महकमे ने कई असलाहत शुरू किए हैं ताकि असातिज़ा की तरक्कियों और दीगर मामलों को तरजीह बुनियादों पर हल किया जा सके। इन बातों का इजहार वजीर मौसूफा ने कल एक रोज़ा टीचर्स कन्वेंशन के दौरान किया, जिसका अहतमाम जम्मू कश्मीर टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने किया था। उन्होंने कहा कि महकमा ने लेक्चरारों की 594 असामी को पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर किए हैं ताकि महकमे में खाली पड़ी लेक्चरों की असामियों को जल्द पूर किया जा सके। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल के रास्ते से जारी है और अब तक मजमुई तौर 4.5 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। इसी बीच आज भगवती नगर जम्मू के बुनियादी कैंप से 1605 यात्रियों पर मुश्तमिल 24वां काफिला वादी के लिए रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस जस्टिस संजय कुमार की सरबराही में कल हाईकोर्ट कम्प्लेक्स जानीपुर जम्मू में एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत एक शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। इस मौके पर जस्टिस संजीव कुमार ने आबोहवा की तब्दीली को रोकने और माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखने में पेड़ पौधे लगाने की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि हयातियाती तनाव को बरकरार रखने के काम में आम लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

इसके अलावा आप हमें DTH पर सुन रहे हैं, वेज OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम उपलब्ध हैं और आप हमें सुन सकते हैं यूट्यूब के आराधना चैनल और न्यूज़ ऑन AIR के आराधना सर्विस पर। श्रोताओं आइए गायत्री मंत्र सुनते हैं।

से आज तीर्थ यात्रा को फिलहाल आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है क्योंकि यात्रा ट्रैक्स पर मरम्मत चल रही है। इस वजह से प्रशासन का ये फैसला कि फिलहाल आज तीर्थयात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप जहाँ ठहरे हैं वहाँ आपकी रहने खाने पीने और चिकित्सा की सुविधाएं रखी गई हैं, तो आप एक दूसरे से मिलिए जुलिए, एक दूसरे से बातें शेयर कीजिए और

चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन .com पे जाइए।

0: आचार्य मंदिर और दूसरी जगहों पर दर्शन के लिए उसे लिया जाएगा। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि अभी यात्रा काफी खुश अश्रुभी के साथ या पूरा मंत्री के साथ जारी है। वही प्रशासन का भी ये मानना है कि लगभग 4.5 लाख जो यात्री हैं उन्होंने अभी तक पवित्र गुफा का दर्शन किया है और ये सबसे अच्छी और खूबसूरत बात है इस यात्रा को लेके। लेकिन जो रिसेंट रेनफॉल हुई जिसकी वजह से जो पहलगाम ट्रैक है उसको नुकसान पहुंचा और उसकी मेंटेनेंस का काम गवर्नमेंट की तरफ से शदोमत से जारी है और उस पर टॉप प्रायोरिटी रखी गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। वो चाहे BRO हो, इंडियन आर्मी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, यहाँ का R&B डिपार्टमेंट हो, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या जितने भी लाइन डिपार्टमेंट से हर एक डिपार्टमेंट ऑन टो है और कोशिश ये की जा रही है कि यात्रियों की जो सुविधाएं हैं, यात्रियों की जो फैसिलिटीज है या यात्रियों के लिए जो ट्रैक्स है उनको बेहतर से बेहतर किया जाए। तो उम्मीद यही है कि मौसम भी बेहतर हो और यात्रा भी इसी पूर्ण तरीके से जारी रहे।
1: जी इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।

भर का सुखद सुकून दे जाती है। गुफा के भीतर प्राकृतिक हेम से बनने वाला शिवलिंग शिव पुराण का जीवंत प्रमाण है। हर श्रद्धालु जब इस दिव्य संरचना को नमन करता है तो उसे विश्वास होता है कि प्रकृति स्वयं शिव जी का अचल रूप धारण किए हुए है। ऊंची चट्टानों के बीच भक्तों के मंत्रोच्चरण और शंख ध्वनि का प्रतिध्वनि वातावरण को एक गंगा सी निर्मल ऊर्जा से भर देती है। जी हाँ श्रोताओं,

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz। श्रोताओं आपको बता दें कि आज प्रातः भगवती नगर से कुल मिलाकर 1605 यानी कि 1605 तीर्थयात्रियों को 54 छोटे बड़े वाहनों में भगवती नगर से रवाना किया गया, जिनमें पुरुषों की संख्या 1215, महिलाएं 335, बाल और इसमें साधु 48 और साध्वी

और भगवती नगर से कड़ी सुरक्षा के बीच कुल मिलाकर 1605 तीर्थयात्रियों को 54 छोटे बड़े वाहनों में घाटी की ओर प्रस्थान कराया गया, जिनमें पुरुषों की संख्या 1215, महिलाएं 335, साधु 48, साध्वीज 5, बालक 2, और ये यूं कुल मिलाकर ये संख्या बन जाती है 1605।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। आपको बता दें कि जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही कहा कि दोनों मार्गों से जो है यात्रा जाती है, और यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि चाहे आप पहलगाम मार्ग से यात्रा करें या बालताल मार्ग से, दोनों ही रास्तों पर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और प्रशासन की और से विभिन्न सुविधाएं जो है व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। हर मुख्य पड़ाव पर विश्राम शिविर, मेडिकल असिस्टेंस, पीने के पानी की व्यवस्था, टॉयलेट्स, सुरक्षा कर्मचारी और जानकारी केंद्र जो है रखे गए हैं। यात्रा के दौरान कई सेवा समितियां और धार्मिक संगठन निःशुल्क लंगर सेवा भी चलाते हैं। सुबह की गर्म चाय हो, खिचड़ी दाल और रोटी का भोजन हो या फिर हल्का फुल्का जलपान, हजारों सेवादार पूरी श्रद्धा के साथ दिन रात यात्रियों की सेवा में लगे रहते हैं। यही सेवा भाव श्री अमरनाथ यात्रा को और भी विशेष बनाता है। प्रकृति का सम्मान करें, यही आपसे अनुरोध है। ये हिमालय जो है हमारी धरोहर है, प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, कचरा इधर उधर ना फेंकें, और हम ये कहेंगे कि जो पवित्रता हम बाबा बर्फानी के दरबार में देखने आते हैं, उस पवित्रता को बनाए रखना भी हम सब की सांझी जिम्मेदारी है।

बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, न्यूज़ ऑन एआईआर, डीटीएच वेव्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म के द्वारा भी आप हमारे संग जुड़े हुए हैं। श्रोताओं, अब से बस कुछ ही क्षणों में आप आकाशवाणी दिल्ली से

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने अपने मंत्रालय से संबंधित फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 22वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में बयान दिया। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। हंगामा के जारी रहने पर सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर डाली गई बाधा पर चिंता भी व्यक्त की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: लोकसभा की कार्यवाही एक स्थगन के बाद अब जारी है। इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और शारीरिक रूप से मारपीट की। परिवार वालों ने यह भी दावा किया कि इस घटना में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। भूटान नरेश जिग्मे खेसा नामग्याल वांगचुक ने आज विदेश सचिव विक्रम मिश्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच विकास और सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में भूटान नरेश ने विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की सराहना करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पूबी लालचंद जोवा ने कहा है कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में श्री लालचंद जोवा ने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली रूप से बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 103 अंक बढ़कर

0: Women's discus throw at Glasgow last night. Australia continued to lead the standings with 110 medals, while India were 10th with 17 medals on day 8. And with that, we end this news bulletin.
1: बने हुए आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, आराधना चैनल के माध्यम से भी आप हमारे संग बने हुए हैं। DTH एवं न्यूज़ ऑन AIR के संग भी जो है आप बने हुए हैं, आप इसके द्वारा भी हमारे संग जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा भी उसके OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम उपलब्ध हैं।
2: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
2: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है, सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है।

0: मैंने खुद को
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।

विशेष प्रसारण श्रेया मनाजी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, न्यूज़ ऑन एयर की आराधना चैनल डीटीएच और हमारी ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। मैं आपकी उद्घोषक पजमान फेरोज आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगी शाम के 6 बजे तक।

शेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोताओं आयो आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे जहां से आप समाचार समाप्त करेंगे।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz पर। श्रोताओं, आपको बता दें कुछ ही क्षणों में आपको हम आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से आप समाचार समाप्त करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के सिफारिशों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर पैदा की गई बाधा पर भी चिंता व्यक्त की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। सरकार ने कहा है कि वो विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों पर पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जानकारी दे रही है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वो अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 233 अंक बढ़कर 78,161 जबकि निफ्टी 81 अंक बढ़कर 24,398 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। न्यूज़ ऑन एयर की आराधना चैनल डीटीएच और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम आपकी सेवा में उपलब्ध हैं।

0: विशेष प्रसारण श्रेया मनाज यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आए आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे, जहां से आप उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में समाचार समाप्त करेंगे।
1: बुलेटिन खत्म होते हैं, नमस्कार।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। लोकसभा ने पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। कई मामलात पर अपोजिशन के शोरगुल की वजह से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई पीर तक मुलतवी कर दी गई। हैदराबाद पुलिस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिले एतराज मवाद फैलाने की बिना पर मेटा इंडिया के अहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज की है। CJP के एहतजाज के दौरान जख्मी होने वाले दिल्ली पुलिस के अमले के कुंबे वालों ने इंसाफ की मांग की है और

0: ढांचे, सेमी कंडक्टर, बिजली और शाहराहों के अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में वो भोगापुरम के मकाम पर 5,600 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह करेंगे और विशाखापट्टनम में इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के तहत रियासत की पहली सेमी कंडक्टर तैयार करने वाली फैक्ट्री का संगे बुनियाद रखेंगे, जिस पर 460 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। वजीर आजम अनंतपुरम में 9,900 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के पावर ग्रिड ट्रांसमिशन के कई प्रोजेक्टों का भी संगे बुनियाद रखेंगे। हैदराबाद पुलिस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिल एतराज मवाद फैलाने की बिना पर मेटा इंडिया के अहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज की है। सोशल मीडिया चलाने वाले कई दूसरों के खिलाफ भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इसी तरह के काबिल एतराज मवाद की वजह से ये FIR दर्ज की गई है। BAP के सोशल मीडिया शोबे की तरफ से शिकायत दर्ज कराने के बाद ये केस रजिस्टर किया गया है। साइबर क्राइम के DCP अरविंद बाबू ने तस्दीक की है कि FIR दर्ज कराई गई है और इस मामले की तफ्तीश जारी है। तेलंगाना BJP ने मुतालबा किया है कि इस तरह का मवाद फैलाने के मुबैना जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। BJP के तर्जुमान NV सुभाष ने कहा कि पार्टी ने साइबर क्राइम पुलिस से राबता कायम किया है और वाजे तौर पर कहा है कि इजहार राय की आज़ादी को बेजा और किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्मों को कानून के तहत जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। आयुष की वजारत और इंडिया AI ने आयुष के सेक्टर में मसनूई जहानत AI पर मबनी इख्तियारात को फरोग देने के लिए एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। इस मुफाहमत नामे का मकसद तहकीक, डिजिटल सेहत, अद्वियाती पौधों और दवाओं के बंदोबस्त के शोबों को मसनूई जहानत के जरिए मजबूत बनाना है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पुरअमन मुजाहरीन पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। एहतजाज के शुरू होने के बाद से अब तक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 120 से ज्यादा अफराद के हलाक होने की खबरें हैं। ताजा तरीन वाकयात में रावलकोट, मीरपुर और कोटली में खवातीन मुजाहरीन पर मुबैना फायरिंग शामिल है, जिसकी वसी पैमाने पर मजम्मत की जा रही है और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक ताज़ा खदशात पैदा हो गए हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इस हफ्ते के शुरू में सिविलियन अफराद के खिलाफ वहशियाना कार्रवाई के बाद जिसमें 40 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए, एहतजाज का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक मकामी हुक्काम ने अब बुनियादी हकूक का मुतालबा करने वाली खवातीन मुजाहरीन को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। बांधों में शिगाफ पड़ने और दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने की वजह से रियासत के वसी तर इलाके मुतासिर हैं। बालाई इलाकों में बारिश कम होने के बाद महानदी दरिया बतदरीज मामूल पर आ रहा है, लेकिन बैतरानी और इसकी मुआविन नदियों के बारे में नए खदशात पैदा हो गए हैं। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि रियासत के 57 ब्लॉकों में तकरीबन 8 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं, जबकि हुक्काम इमदादी बचाव और निगरानी की कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा ने पैदाइश और अमवात की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। कई मामलात पर अपोजिशन के शोरगुल की वजह से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई पीर तक मुलतवी कर दी गई। हैदराबाद पुलिस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिल एतराज मवाद फैलाने की बिना पर मेटा इंडिया के अहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज की है। CJP के एहतजाज के दौरान जख्मी होने वाले दिल्ली पुलिस के अमले के कुंबे वालों ने इंसाफ की मांग की है और मुजाहरों के दौरान और ज्यादा तहफ्फुज देने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज पुरअमन एहतजाज करने वालों के खिलाफ वहशियाना कार्रवाई जारी रखे हुए है। 120 से ज्यादा अफराद के मारे जाने की इत्तला मिली है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Lok Sabha passes the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026. Both Houses of Parliament adjourn for the day amid opposition uproar over several issues. Hyderabad police registers FIR against Meta India officials for spreading objectionable content on Prime Minister Narendra Modi. Families of injured Delhi police personnel during CJP protest demand justice, call for greater protection.

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान

0: पुलिस कर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज, 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
1: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले सदन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
2: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके

0: आज सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं।
1: सदन की गरिमा के साथ सवाल किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। सदन की गरिमा को तार तार करना ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने के बाद की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा की सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर तैयार की गई विकृत, अपमानजनक और निंदनीय सामग्री बनाने, फैलाने और प्रचारित करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उपनिरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सर में चोट आई।
2: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन्स पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट है उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: झारखंड की भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर इस मामले पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र JPSC पेपर लीक और JSSC भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: देखो, झारखंड के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं पिछले 5 दिनों से, भारी बारिश में भी ऊपर प्लास्टिक लगा वो भी छू रहा लेकिन हिल नहीं रहे। उनकी एक ही डिमांड है कि JPSC पेपर लीक मामला और JSSC जो भर्ती घोटाला उसकी CBI जांच कराओ। झारखंड की जनता ने पूरी तरह मन बना लिया, CBI जांच से कम स्वीकार नहीं। क्यों? हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं।
0: आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर

संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रेनसा टाउनशिप में एक नाटकीय अभियान में बंगाल एसटीएफ ने जैश के एक संदिग्ध आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आतंकवादी सज्जाद भट्ट गुट से जुड़ा हुआ है।

0: संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात के कई हिस्सों में आज फिर हुई तेज बारिश से जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है।
1: गुजरात में सुबह से ही कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सूरत, खेड़ा और आणंद जिलों में कई जगहों पर गंभीर जलभराव देखने को मिला है। व्यापक जलभराव को देखते हुए आज सुबह से ही वडोदरा, सूरत, आणंद और नर्मदा जिले के निचले इलाकों में रहने वाले 720 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण राज्य के 21 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसटीआरएफ की 33 प्लाटू और सेना के 6 कॉलम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं मौसम विभाग ने मछुआरों को 2 अगस्त तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान जारी है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि महानदी नदी प्रणाली में अब काफी हद तक नियंत्रण में है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बारिश कम हुई है। हालांकि लगभग 2,68,000 लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, जबकि 13 जिलों में करीब 8,00,000 लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बैतरणी नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। राजुआ नदी के बाढ़ के पानी ने खोरदा जिले के कई गाँव को प्रभावित किया है। उड़ीसा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। और गुजरात तथा मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पर और FM पहलगाम 100.1 MHz पर। न्यूज़ ऑन एयर की आराधना चैनल DTH और HD प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोताओं, आपकी यात्रा मंगलमय, सुरक्षित और सुखद रहे। सफ़र के दौरान सभी नियमों का पालन करें। प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का सम्मान करें और अपने सामान का ध्यान रखें।

श्रोताओं जुड़े हुए हैं आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के संग, जो आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम पर। श्रोताओं, पल पल के अपडेट्स हम आपके साथ साझा करते हैं। फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता राम।

0: उत्तराखंड से मोहम्मद तस्कीन साहब। जी तस्कीन साहब।
1: जी शुक्रिया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के हवाले से ये खबर कि आज सुबह से ही इस पर काम चल रहा है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में और रामबन डिस्ट्रिक्ट के मुख्य मुकाम पर जो पिछली बारिशों की वजह से जो हाईवे को नुकसान पहुंचा है और उस वजह से वहां पर जो रेगुलर ट्रैफिक होता है, नॉर्मल ट्रैफिक का उसे इफेक्ट पड़ता था, तो उसी को ठीक करने के लिए जो कल जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उधमपुर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामबन के ऑफिस से एक हुक्म जारी हुआ जिसमें ये कहा गया कि आज यानी फ्राइडे के लिए हाईवे बंद रहेगा, कोई ट्रैफिक चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी और वो मतलब उस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है और उधमपुर और काजीगुंड से आगे किसी भी ट्रैफिक को बढ़ने की इजाजत नहीं है। इस दौरान जो शरी अमरनाथ यात्रा का आज जो काफिला था, जम्मू से एक ही काफिला था जो कश्मीर की तरफ आया बालतल के रास्ते, ये 24वां बैच जो था तो इसमें 54 जो गाड़ियां थी और इसमें जो 38 बसें थी और बाकी मोटर कार्स वगैरह थे, तो वो सभी जो 1215 जो ये जो यात्री थे वो अपने अपने जो मतलब उनका जो डेस्टिनेशन था बालतल, तो उस तरफ रवाना किया गया। बहरहाल में उनको सुबह नाश्ता किया गया, करीबन 8:30-9 बजे ये आज यहाँ से निकलकर कश्मीर इंतजामिया के हवाले किया गया और वहां से इनको जो मंजिल मकसूद है जो पवित्र गुफा के दर्शन की तरफ ये जा रहे हैं, तो उनको वहां तक पहुंचाने के लिए कश्मीर इंतजामिया पार्टी जो उनका वो निजाम रहेगा अब आगे के लिए।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: जी शुक्रिया।

0: श्रोताओं जुड़े हुए हैं आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के संग, जो आप FM बालतल और FM पहलगाम पर समाप्त कर रहे हैं। पल पल के अपडेट्स हम आपके साथ साझा करते हैं। फोन लाइन पर जुड़े हुए हमारे साथ भगवती नगर से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब साहब। जी जावेद साहब
1: जी, बाबा बर्फानी की पावन यात्रा का सिलसिला यहाँ जारी है। जम्मू निवास स्थान से लगभग अब हर दिन श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हो रहा है और बाबा बर्फानी की इस यात्रा का हिस्सा बन रहा है। वहीं जम्मू में जहाँ श्रावण मास के शुरू होने की शुरू हो गया है और उसकी वजह से लोग जो हैं वो यहाँ के स्थानीय मंदिरों, यहाँ के स्थानीय धर्म स्थलों में खूब नजर आ रहे हैं, क्योंकि श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही यहाँ मंदिरों और धर्म स्थलों पर पूजा अर्चनाएं हो रही है और लोग जो श्रद्धालु हैं वो पूरी तरह से, न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि स्थानीय लोग भी इन मंदिरों में खासे देखे जा सकते हैं। इस दौरान यहाँ उमस और गर्मी लगातार बराबर जारी है। जम्मू में हल्की सी सुबह बारिश भी हुई थी, लेकिन उसके साथ ही फिर बीच में धूप निकल आई, बीच में बादल फिर आ गए, तो गर्मी और उमस में किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं है। और इस दौरान श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों के भी पसीने छूट रहे हैं और शहर के अंदर जो है श्रद्धालु घूमते, खरीदारी करते, स्थानीय व्यंजनों का मजा लेते भी नजर आ रहे हैं। वहीं भगवती नगर निवास स्थान के में तीर्थ यात्री तवी के तट की जो ठंडी हवाएं हैं उनका भी लुत्फ उठा रहे हैं और यहाँ निवास स्थान भगवती नगर में लंगर, योगा, मनोरंजन, भजन, भक्ति संगीत, खास तौर पर आज से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं इनमें हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि श्रावण मास का जो ये धार्मिक एक
0: जी
1: बड़ी, मतलब उसकी एक धार्मिक भी बड़ी महत्वता है। तो इन चार सोमवारों में, जो अब आने वाली चार सोमवार हैं, इनमें खास तौर पर पूजा अर्चनाएं होंगी और इस दौरान जो है पवित्र श्री अमरनाथ जी की पावन दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु भी लगातार जम्मू पहुंच रहे हैं। यहाँ से वापस अपने घरों को रेल के माध्यम से, सड़क के माध्यम से बराबर लौट रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। वहीं बाबा बर्फानी की आस्था के इससे जुड़े श्रद्धालु लगातार जम्मू कश्मीर भी पहुंच रहे हैं और यहाँ पंजीकरण की

0: क्रियाओं को पूरा कर बेस कैंप भगवती नगर की तरफ उन्हें प्रस्थान करना पड़ता है और यहाँ से लगातार रवाना होकर प्रसन्नता के साथ अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। और खास तौर पर इस महीने में श्रद्धालु यहाँ, जैसे मैंने कहा कि मंदिरों की और यहाँ के जो धर्म स्थल हैं, खास तौर पर श्री अम्बेश्वर मंदिर, आप शंभु मंदिर, पीर खोशियो मंदिर, पंचवक्तार मंदिर और शहर के अन्य मंदिर भी जो हैं उनमें पूजा अर्चनाएं शुरू हो गई हैं। शाम को आरतियां होती हैं, उनमें भी श्रद्धालु खुलकर हिस्सा लेते हैं। तो एक शहर में एक अच्छा खासा माहौल है तीर्थ यात्रा का। इसके साथ ही जो माता वैष्णो देवी की यात्रा के श्रद्धालु हैं वो भी लगातार शहर के अंदर देखे जा सकते हैं। और कुछ जो पवित्र श्री बाबा अमरनाथ जी की तीर्थ यात्री हैं, वो कई बार जिन्हें अभी डेट फाइनल नहीं होती है, वो श्री माता वैष्णो देवी के द्वार की तरफ भी निकलते हैं। तो ये एक सिलसिला जो इस शहर में बना हुआ है, क्योंकि मंदिरों का शहर है और खास तौर पर इस महीने की एक धर्म धार्मिक जो इसकी इम्पोर्टेंस भी है, उसकी वजह से जो है वो शहर में बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। और जो लगातार यात्रु यहाँ पहुंच रहे हैं वो इस खुशी में पहुंच रहे हैं कि उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। और जिस तरह से लगातार जिस रणनीति के साथ जो यहाँ मैनेजमेंट है,
1: जी
0: जिसमें श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, उसके अलावा जो जिला हेडक्वार्टर्स हैं या राष्ट्रीय राजमार्ग की अथॉरिटी है या बालटाल मैनेजमेंट है, सारे मिलकर इस जो पवित्र यात्रा है उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक रणनीति ये भी ली जाती है, कुछ समीक्षाएं भी होती हैं। उस समीक्षाओं में कई बार आज की डेट में सुबह जल्दी टाइमिंग कर दी गई है, जहां पहले 4 बजे श्रद्धालुओं को यहां से भेजा जाता था, अब 2 से 2:30 बजे के बीच में भेजा जाता है, ताकि उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी मौसमी परिस्थिति का सामना न करना पड़े, रास्ता बंद न हो किसी तरह से, क्योंकि मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है उसमें कहीं कहीं जिलों में बारिशें भी होंगी, कहीं भूस्खलन भी होंगे। लेकिन अभी तक आज हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग बंद भी था स्थानीय ट्रैफिक के लिए, लेकिन पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा का ये काफिला जो है वो बराबर यहाँ से आज निकला भी, रवाना भी हुआ और बालटाल की तरफ भी जा रहा है। हालांकि आगे अभी मौसम की वजह से यात्रा अभी बंद है, बालटाल के मार्ग से अभी बंद है यात्रा। जैसे ही मौसम खुलेगा, क्योंकि अभी कश्मीर में उस तरह की बड़ी कोई भविष्यवाणी नहीं है, जम्मू संभाग में इस तरह की भविष्यवाणी थी, लेकिन जो सावन का असर होता है वो कई बार जम्मू और कश्मीर दोनों में देखा जाता है, जिसकी वजह से कई बार यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये डिसीजन लिया जाता है, फैसला लिया जाता है कि तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए और तभी उनकी रवानगी को की जाए जब पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए कि किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं है और रास्ता जो ट्रैक है बालटाल से होके पवित्र गुफा तक का वो बिल्कुल ठीक है। तो ये पूरी एक रणनीति, एक मैनेजमेंट के तहत ये सारी तीर्थ यात्रा चल रही है। और यहाँ भी जम्मू में अब पिछले 1 महीने से 1 महीने के ज्यादा हो गया अरसा, इस दौरान जो एक मैनेजमेंट प्रशासन ने बनाई है, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने बनाई है, उसके अलावा जो स्वयंसेवी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं इसके साथ, तो वो एक पूरी कॉपरेशन के साथ, एक मैनेजमेंट के साथ इस तीर्थ यात्रा को बेहतर बनाने के लिए, इसको और उसमें आसानियां पैदा करने के लिए, श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, श्रद्धालु पूरी तरह से चाहे कम संख्या में जरूर जा रहे हैं अपने श्रद्धालु, लेकिन बराबर यहाँ पहले बेस कैंप से रोजाना रवाना हो रहे हैं बाबा श्रद्धा बाबा बर्फानी की इस यात्रा में। तो एक अच्छा सिग्नल भी है, एक अच्छी खबर ये भी है कि किसी भी तरह से प्रशासन ने जानबूझकर रोकने की कोशिश नहीं की और बाजाबता प्रशासन ने इस बात को देखा कि किस तरह से जो है जो यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा को बनाते हुए, उनकी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, उनकी आसानियों को बनाए रखने के लिए उन्हें एक बेहतर मैनेजमेंट के साथ रवाना किया जाए और किसी भी तरह से कोई कमी सुरक्षा प्रबंधनों को लेकर या जो यहाँ पहला निवास स्थान भगवती नगर है उसमें किसी तरह से कोई कटौती नहीं की गई है, किसी भी तरह से चिकित्सा का, खाने पीने का, भोजन का, योगा का, हर एक सेंटर,

0: वहाँ अंदर है, और बाजाबता ट्रेनिंग भी होती है इस विपरीत मौसम में, जब मौसम ठीक ना हो उसमें खास तौर पर किन किन बातों का ख्याल रखना है उसकी खास तौर पर ट्रेनिंग भी दी जाती है, और श्रद्धालुओं को तैयार भी किया जाता है कि वो इस मौसम में किस तरह से प्रशासन के साथ मिलकर एक काफिले की सूरत में बेहतर तौर पर बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकें।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत शुक्रिया।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे अनंतनाग से संवाददाता हमारे एस तारिक साहब। आइए जानते हैं क्या कुछ लेके अपडेट्स आए हैं हमारे साथ यात्रा के हवाले। जी तारिक साहब।
1: बहुत शुक्रिया जी। आज श्री अमरनाथ जी यात्रा के प्राचीन अमरेश्वरी मार्ग पहलगाम से श्री अमरनाथ जी के पवित्र गुफा तक सुबह के समय मौसम सामान्य तौर पे उग्र आलूद था। इस समय विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों पर हल्की सी मध्यम वर्षा हो रही है, जबकि रात के समय कहीं कहीं हल्की बरसात जारी रहने का अनुमान है। इधर शिशनाग, महागुणस्ता, पंचतरणी और श्री अमरनाथ

0: यात्रा के पवित्र गुफा सिमत ऊंचे वाले क्षेत्रों में नमी से भरपूर और दुर्गम मौसमी स्थितियां बनी हुई है। इन क्षेत्रों में घी धुंध के कारण गतिशीलता कम हो सकती है। लगातार वर्षा से हुए नुकसान के मद्देनजर पहलगाम मार्ग पर मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। इस कारण ये मार्ग आज भी आरजी तौर पे बंद रखा गया है। इस समय श्री अमरनाथ जी यात्रा के आवागमन व्यवस्था क्यूल बालतर मार्ग से सुचारू रूप से जारी है। इस क्रम में जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 54 छोटे बड़े वाहनों पर मुश्तमिल 1605 श्रद्धालुओं का नया जत्था बालतल मार्ग पहुंच चुका है। इस जत्थे में 1215 पुरुष, 335 महिलाएं, 38 साधु, 5 साध्वी और 2 बालक साधु शामिल थे। 57 दिनों की इस पवित्र यात्रा के दौरान कल कुल मजीद 5211 शिव भक्तों ने श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा में दर्शन प्राप्त किया था। इसके साथ ही यात्रा के आरंभ से अब तक दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या बढ़कर 4,46,788 हो गई है। इधर पहलगाम के नुनवर आधार शिवर, शिशनाग और पंचतरनी क्षेत्रों में भी इस समय कोई श्रद्धालु मौजूद नहीं है। ताहम यात्रा मार्ग और सभी आधार शिविरों पर विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी श्रद्धालुओं की सेवा, सुरक्षा और आवश्यक सहूलियात की फराहमी के लिए बराबर तैनात है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर पवित्र गुफा तक 3 सती सुरक्षा घेरे कायम किए गए हैं। सुरक्षा बल के जवान 24 घंटे पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहकर यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने में मसरूफ है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ अपडेट साझा करने के लिए।
0: धन्यवाद।

विशेष प्रसारण श्रेया मनाजी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, खराब मौसम या रास्ते में किसी भी प्रकार की रुकावट होने पर कृपया प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और ऑफिशियल जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। तमाम यात्रियों से निवेदन है कि अगर आपको किसी भी सहायता की आवश्यकता हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे हेल्पलाइन के द्वारा। हमारी हेल्पलाइन नंबर है 9559690954 9596990954। इसके अलावा हमारे पास टोल फ्री नंबर से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जम्मू के लिए है 1800180718, 1800180718। श्रीनगर के लिए 1800180719, 1800180719। इसके अलावा ईमेल आईडी भी आप नोट कर लीजिए, akashvanibaltal@gmail.com, akashvanibaltal@gmail.com। शन शन के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें।

विशेष प्रसारण श्रेया मनाज यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। एक ज़रूरी सूचना उन सभी भक्तों के लिए जो भी यात्रा की योजना बना रहे हैं, यात्रा पर निकलने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। बिना वैलिड परमिट के यात्रा की अनुमति नहीं है। नियम और प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तमाम यात्रियों से निवेदन है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे फ़ोन लाइन के द्वारा। हमारी फ़ोन लाइन नंबर है

हेल्पलाइन नंबर है 9596990954, 9596990954। इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर भी नोट कर लीजिए, जम्मू के लिए टोल फ्री नंबर है 1800-1807198, 1800-1807198। श्रीनगर के लिए है 1800-1807199, 1800-1807199। ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए, akashvanibalchal@gmail.com, akashvanibalchal@gmail.com। शन शन के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, लगातार वर्षा और प्रतिकूल मौसम के चलते प्रशासन ने आज ये निर्णय लिया है कि बालतल मार्ग से अमरनाथ यात्रा को आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। ये निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि भोलेनाथ के जो भक्त है वो सुरक्षित रहे, सलामत रहे और उनको किसी भी प्रकार की दुविधा का सामना न करना पड़े। आपसे निवेदन है कि संयम बनाए रखें और धैर्य से काम लें। श्रोताओं, यात्रा पुण्य कब आरंभ होगी इसकी जानकारी आधिकारिक माध्यमों के द्वारा ही दी जाएगी।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे साथियों द्वारा बालतल में रिकॉर्ड की गई आरती आप तक पहुंचाते हैं।

0: गए।
1: जय।

श्रोताओं, आप बालतल में रिकॉर्ड की गई आरती समाप्त कर रहे थे। इसी के साथ आज की सभा समाप्त होती है। आपको बता दें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बालतल में हमारे साथी इंजीनियर्स थे सजाद अहमद गोरकू, मंजूर अहमद नजार और शौकत अहमद। मैं आपकी साथी उद्घोषिका पजमान फेरोज़। इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूक वानी और श्री गुलाम रसूल आखून। यात्रा का विशेष प्रसारण लिए हम आपकी सेवा में कल प्रातः 6:53 पर फिर से उपस्थित होंगे। जब तक के लिए शुभ यात्रा, शुभ रात्रि, जय हिंद।

भरद्वाज आश्रम से भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां कुछ आदिवासी स्त्रियां मिलती हैं और सीता से प्रश्न करती हैं। सीता जी लजाकर कुछ इस तरह कह उठती हैं।

उधर भरत जी अयोध्या से प्रभु राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं और राम जी से अयोध्या वापस चलने की प्रार्थना करते हैं।

राम जी की आंखें भर आती हैं और अपनी खड़ाऊ भरत जी को देते हुए अयोध्या की गद्दी संभालने के लिए वचन लेते हुए विदा करते हैं।

प्रभु श्री राम भरत जी को विदा कर पहुंचते हैं पंचवटी, जहां पर 14 वर्ष बिताने का निर्णय लेते हैं। तभी सूपनखा वन में घूमते घूमते प्रभु श्री राम को देख मुग्ध हो उठती है और राम से विवाह करने का प्रस्ताव कुछ इस प्रकार से रखती है।

0: श्रावण मास के पवित्र अवसर पर प्रस्तुत है द्वादश ज्योतिर्लिंग पर आधारित ये कार्यक्रम, जिसमें आज आप जानेंगे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम ओम नमः शिवाय।
1: नमस्कार। दूसरे स्वरूप में भगवान शिव के मल्लिकार्जुन स्वरूप है, उसकी अब चर्चा करने जा रहे हैं। चूंकि श्लोक में पहले ही आया है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम। मल्लिकार्जुनम कहने मात्र से लगता है कि मल्लिका और अर्जुन दो शब्द हैं। मल्लिका का तात्पर्य देखे अगर अर्थ बोध में, कि मल्लिका उस जगह में चमेली के वृक्ष को कहते हैं, और अर्जुन जो भगवान शिव स्वयं थे, अर्थात दोनों एक दूसरे के कितने पूरक हैं, तो चमेली के वृक्ष से लिपटा हुआ अर्जुन ही मल्लिकार्जुन होते हैं। यह स्थान मल्लिकार्जुन का आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। उस श्रीशैलम पर्वत के नजदीक मंदिर है और कृष्णा नदी के किनारे पर अवस्थित है, इसलिए उसको दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। मल्लिका भ्रमरांबा देवी पार्वती को कहा जाता है, यानी माता पार्वती दोनों एक स्वरूप में वहां विराजमान रहते हैं, और उनके मिलन के स्थल को, मिलन स्थल को हम शिव और शक्ति के रूप में जानते हैं। कार्तिकेय और गणेश की कथा यह देखी जाती है कि एक बार शिव कार्तिकेय और गणेश के विवाह की बात भगवती परम्बा माँ पार्वती से कर रहे थे। दोनों पुत्रों की चर्चा जैसे शुरू हुई, तीनों लोकों में प्रसन्नता भर गई। तो कार्तिकेय जो बड़े उनके लड़के थे, जिनका जन्म दक्षिण में ही हुआ था, तुरंत वो अपने वाहन मोर पर सवार होकर के विश्व भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। लेकिन भगवान गणेश जी बहुत ही बुद्धिमान और कहा जाता है कि विवेक के देवता माने जाते हैं। गणेश जी अपनी माता के परिक्रमा करने से उनको मान लिया जाता है देवताओं के बीच में, कि इन्होंने तीनों लोकों का भ्रमण कर लिया, और उनके भ्रमण करने के पश्चात गणेश का विवाह सिद्धि और बुद्धि से कर दिया जाता है। यह सुन कर करके कार्तिकेय श्रीशैल पर्वत पर वो तप करने चले गए, पार्वती पुत्र वात्सल्य में वहां मिलने के लिए चले गए। और जैसे वहां मिलने के लिए गए, वो मल्लिकार्जुन रूप में वहां प्रकट हुए। ज्योति स्वरूप उनका प्रकट होना, वह स्थान आज भी मल्लिकार्जुन के रूप में जाना जाता है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी दोनों इस कथा का

उल्लेख मिलता है कि श्रीशैल स्थल का तीर्थों का राजा कहा जाता है। इसे पार्वती का प्रिय स्थान माना गया है। यहाँ के दर्शन से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मल्लिकार्जुन भगवान के दर्शन करने से मुक्ति मिलती है। मुक्ति का तात्पर्य है कि जीवन में हमारे बहुत सारे कोई भूलें कोई गलतियां हो जाती हैं, तो प्रायश्चित करने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन करके कि उनका अभिषेक करते हैं तो भगवान प्रसन्न तो होते ही हैं और इस मुक्ति के साधन हमें प्रदान करते हैं। मंदिर का स्थापत्य शैली द्रविड़ शैली में है। मुख्य मंदिर में एक विशेष प्रकार की पूजा होती है जिसको हम अम्मावरु कहते हैं कि श्रावण के महीने में अपने शिवलिंग में भगवान शिव तो स्वयं विराजमान होते ही हैं, लेकिन जब विराजमान इन दिनों होते हैं तो अतीव प्रसन्नता के साथ होते हैं। इसलिए भगवान को कई नामों से जानते हैं, एक त्रिपुरांतक शिव और भगवान का एक नटराज स्वरूप होता है। एक जगह आया है ग्रंथ में कि नृत्य

0: जालम। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो उनके कृत्य वैसे होते हैं जो नटराज के रूप में होते हैं। कमर पर हाथ, सिर पर हाथ और एक हाथ में डमरू जब बजाते हैं तो 14 प्रकार की ध्वनि से निकलता है, तो उसमें 14 वर्ण निकल जाते हैं, जिन वर्णों की चर्चा हमारे व्याकरण ग्रंथ में किया जाता है। आई वन ऋक् एवं आई औच यण यमगण झबगद झपटत उचटत कप यश सरहल। इस प्रकार के जो डमरू से निकले 14 जो महेश्वर सूत्र है वो नटराज के रूप में किया जाता है। भगवान के सानिध्य में भैरव और गैनिस नंदी भी विराजमान रहते हैं। यह आध्यात्मिक साधना स्थल भी है जहां लोग बैठ करके महामृत्युंजय का जप करते हैं। यह जगह शक्ति पीठों में भ्राम रामबा शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। इसलिए यह ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ और ज्योति स्वरूप द्वादश ज्योतिर्लिंगों के रूप में जाना जाता है। यहाँ कई संत और ऋषि तपस्या सदैव करते रहते हैं। आदि शंकराचार्य जी वहां बैठ करके तपस्या किए, रामानुजाचार्य भगवान ने भी वहां तपस्या करके उन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। सिद्ध धारा रामेश्वर प्रमुख भी वही है जहां लोग जाकर के अपने तप करते हैं। इस प्रकार से ज्योतिर्लिंग में हमारे दूसरे रूप में मल्लिकार्जुन भगवान वहां विराजमान होते हैं। उनके दर्शन मात्र से, उनके अभिषेक करने मात्र से हमारे शरीर के अंदर जितने भी कल्मश कषाय है उससे मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। इसलिए हमेशा जब भी अवसर मिले तो मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन श्रावण मास में अवश्य किया जाना चाहिए।
1: ओम नमः शिवाय। अभी आप इस कार्यक्रम में श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुन रहे थे।

आवलिं इमां यस्तु दुर्गाया मम मानवाः पठे सर्वभयान् मुक्तः भविष्यति न संशयः। अर्थात कठिन के दुष्प्राप्य ज्ञानना स्वरूपे रहेला दुर्गम ध्यानथी प्रकाशित थनारा जमनी माया मोह अकड़छे ए दुर्गम मार्ग में रहेला दुष्प्राप्य अर्थना स्वरूप वाला दुर्गा देवी ने हमें प्रणाम करीश। तोज साथे दुर्गम दैत्यना संहारक विकट आयुध धारण करनारा अविचिन्त्य अंगो वाला दुर्गम मार्गे गति करनारा होवाथी दुर्गम्य मुश्किली थी प्राप्त थनारा कम नसीब वाला मानसोना रक्षक स्वामिनी दुर्गा देवी खरेखर परमेश्वरी ये माता दुर्गम्य छे दुष्टो माटे भयंकर छे तमनो क्रोध भयानक होय छे दुष्प्राप्य मुश्किलियों ने टाळनारा दुर्गा माता वंदन करी छे। जे मनुष्य दुर्गाना आ नामो

बाल कृष्ण की प्रीत में तन्मय हर गोपी दिन रात कान्हा के ही सपने देखती है। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया ग्वाल बाल संग गोकुल में गैया चराते बंसी बजाते माखन चुराते और गोपियों संग रास रचाते हुए मनमोहक लीलाएं करता है। यमुना किनारे सांझ सकारे जब गोपाल मुरली की मधुर मधुर धुन छेड़ता है तब गोपियां सुध बुध खो बैठती हैं। कृष्ण भक्त गोपी राधा नंदलाल से प्रीत तो कर बैठी मगर उसे चिंता सताती कि कहां त्रिभुवन का स्वामी सर्वव्यापी नारायण और कहां वो ब्रज की एक साधारण सी गोपी। वो ध्यान में मग्न बंसी भजैया से पूछती रहती, हे गोविंद बांके बिहारी तू ही बता कैसे निभेगी प्रीत हमारी।

अपने

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।